दुखी हुए कि पुत्र कमाई नहीं करता, ये वेदांत कौन करी जाता है? कौन है बच्चा जेड़ा जुतियां की दुकान ते बहता है? कोई पैसे दे जाता है तो ठीक है, जे नहीं देता ता मिलती शासक है। जिसका मन उस परमात्मा नाल लगा होवे वो माया नाल किवें जोड़ सकता है? आखो सतनाम श्री वाहे। कौन है बच्चा? ये वो बच्चा है जिसका उचारिया होया ये शब्द तुसी बड़े प्यार नाल पै सुनते हो। नाम है भगत रविदास। आखो

हे रविदास इस आस से बैठा है कदी ना तेरे दर्शन हो सा संगत जिदे मन विच इन्ना वैराग होवे वो फिर दुनिया दे राग रंगा वल धन दौलत वल

यमुना रविदास का ब्याह कर दे, घरवाली आएगी स्वभाव बदल जाए, जिम्मेवारी को भी भगत रविदास का ब्याह कर देता। भगत जी की शादी हो गई पर साध संग भागा देगा, घरवाली ऐसी मिली जे भगत रविदास कहते ने दिन है, ते घरवाली अगों हाथ जोड़ के कहती है सत वचन स्वामी जी दिन है। जे भगत जी कहते ने रात है, ते घरवाली कहती है सत वचन रात है। भगत रविदास जे अमृत वेले 3 बजे उठते हैं, ते घरवाली उन्हां तों पहला उठ के इशनान करती है और भगत जी वास्ते पानी भर के रखती है इशनान वास्ते। स्वाहिक विचार ही साध संगत नाम भी ताई जपिया जा सकता है जे घर विच सलूक होवे। हुण एक अमृत वेले उठ पवे ते दूसरा आके ना आप सौंदा है ना सानू सौण देंदा है। सवेरे कल्पना पै जाए ते उन्हें नाम की जपने आपको सतनाम सी एक गल आ जाए। कबीर साहब घर बैठे सन, अपनी घरवाली माता लोही नूं कहण लगे, लोहिए अग बाल। घरवाली कहती सत

सब कुछ है जो सत वचन नहीं तो फिर कुछ भी। एक कथा केवल सुनन वास्ते नहीं सिख्या वास्ते के पति पत्नी होन ते उन्हां दा सुभाव और विचार कैसा होवे भगत कबीर साहब बारे। कबीर साहब कहते ने अखबार ते घरवाली कहती है सत वचन। हुण इस नूं सुन के असी अपने मन विच देखिए असी किन्ना कि एक दूसरे का कहना मन दे। पति कहता है ते घरवाली जी करके अगू बोलती सत वचन कह या घरवाली कुछ कहती है ते अगू पति

बचा रहे हैं। पर माता पिता और दुखी हो गए, अगे थे पुत्र दानी सी, अब गुरू भी दानी निकली, अगो सतनाम सिखवाए। एक दिन माता पिता ने कहा, रविदास तेनु पाले और तेरा ब्याह कर देता, सोचे असी तू कमाई करके सानू खुआएगा, पर तू ते दानी, असी तेनू कमा के नहीं खुआ सकते। इस तरह कर, जो समान चाहिए लै लै ते वखरे हो जा, साडे वालों कमाई कर, साडे वालों दान करी। माता पिता ने वखरिया कर दिता, शाही रस्ते ते अपनी चौकी पा ली, चौपड़ी पा ली, पर अजमान ढाढा दुखी होया। मापिया ने केवल इस करके वखरे कर दिता कि मैं पैसे नहीं कमांदा ते कि दुनिया में जो

तेरे तो पहला भी लोग बड़ा कुछ जोड़ गए, जोड़ते ही रह गए, नाल तो कुछ नहीं रह गया, जोड़े आए थे ही रह गया।

बड़े समय बाद ओही महात्मा फिर आए, भगत जी ओही हालत ते पुछदे ने रवदास, मैं तेनू एक पारस दे गया सी, ते भगत जी कहते ने मैनू ते पता नहीं जिथे रख गए सी उथे पिया होवेगा, आखो सतनाम श्री करे। वह पारस दरवाजे दे नालों खोल गया, पारस हाथ विच पकड़िया, ते वो महात्मा कौन है? वो महात्मा और कोई नहीं, आप हरि परमात्मा है, आखो सतनाम श्री करे। प्रिख्या लैण आए सन, समझ गए भगत ने माया ते काबू

भगत जी ने मुंह परले पासे कीता ते ओ महात्मा बैठे बैठे आलोक हो गए। भगत जी कहंदे ने उधर ते कुछ भी नहीं, जब सामने देखिया ते ओ महात्मा आलोक हो चुके। हुण मन वैराग नाल भरिया, ओए मना ओ आप तेरी चुकी विच आया पर तू पहचान ना सके। मन वैराग नाल भरिया ते भगत रविदास जी फिर

जिस दिन महात्मा गए उस दिन तू भगत जी अमृत वेले जद उठते अपना आसन झाड़ते ने पांच सोने दिया मोहरा निकल गया उन्होंने मोहरा नू ठीकरियां मिट्टी समझ के एक पासे सुट देते।

मिट्टी नहीं ए सोने दिया मोहरा ने मैं अपनी खुशी नाल तैनू दे इहदे विच मेरी खुशी है सवेरे एक सेठ आवेगा तेरे सोने मंदिर मकान बनाण वास्ते इनकार ना करे एकदम भगत जी उठ के बैठ गए घरवाली नूं उठाया ते सारी गल दसी घरवाली ने कहा भगत जी जे परमात्मा की इच्छा है फिर सानू इनकार नहीं करना चाहिए दिन चढ़िया एक सेठ आ पहुंचया मोहरा दियां थैलियां भरी मत्था टेक के कहन लगा भगत जी मेरे घर पुत्र कोई नहीं सी मैं सुखना सुखी जे मेरे घर पुत्र होवेगा ते रविदास भगत दे मंदिर मकान मैं आप बनावांगा उस परमात्मा ने मैनू पुत्र बख्शिया उस परमात्मा ने मैनू पुत्र बख्शिया है ते मैनू हुण आके आ दियो मैं सेवा कर सोहणे मंदिर मकान बन गए भगत रविदास की जय जयकार होण लग पई पर सा संग ए समा केड़ा सी एक भी कौड़ा सच ए ओ समा सी जद कोई नेमी जात दा मंदिर नहीं सी जा सकदा कोई पूजा नहीं सी कर सकदा ए उस वेले दी कथा अज भी कई स्थान ऐसे हैं जिथे नीवी जात स्टूल कास्ट नहीं

मैं अनजान हाँ, मैं तैरना नहीं आंदा। तू कृपा करके जरा बांता फड़ा, मैं पार लंघ जावां। जिन्हां जिन्हां ने तेरी भगती कीती, जिन्हां जिन्हां ने तेरी आराधना कीती, जिन्हां जिन्हां ने तैनू ध्याया, तू मनुखां तू देवते

जन तेऊ मुक्त भय, चरण बदक हे प्रभु तेरे पैरां विच तीर मारन वाला ओ शिकारी भी तर गया, गनका भी तर गई, कुबजा मालन भी तर गई, मेरे ते

भाई साहब ने अगली गल बड़ी कमाल दी कही है। कहंदे ने हार चले जेड़े भगतां नाल ईरखा करदे ने, भगतां नाल द्वैत करदे ने, भाई साहब कहंदे ने मालक उन्हां दा

रंग के फरंगाबाद, बंग के बंगाली, फरंग के फरंगाबाद, दिल्ली के दिलवाली, तेरी आज्ञा में चलते तेरा अंत न पारावारिया, रोके रुगेले मग देश के मंगेले भी, बंगसी बंगेले पाप पुंज को मालते हैं, गोखा गुन गावे, गोखा गुन गावे, गुन गावे गुन

तिन पूर्ण प्रताप पाय सर्व धन ताम फल फूल को फल ते है तेरा अंत न पारा बारिया तेरा अंत

थी चौपी बादशाही दसवीं हमरी करो हाथ देर अच्छा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरण मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सवै तुम कावो आप हाथे मोए बचाव सुखी बसे मोरो परवारा सेवक सिख स्वै करतारा मोर अच्छा निज कर दे करिए सब एरन को आज संगरी है पूर्ण होए हमारी आशा तोर भजन की रहे प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊं जो बर चाहो सो तुम ते पाऊं

सब जगत बनायो देव दैत जचन उपजायो आद अंत एक अवतारा सही गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिसी को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी शिवगुन को शिव गुण सुख दियो सतरन को पल मोह बद कियो कट कट के अंतर की जान भले बुरे की पीर पहचान चीटी ते कुंचर अस्तूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के

करा कर तारा पर जा दर्द तब दे अपारा जब आकर कठो कबू तुम मैं मिलत दे दर सबू जेते बदन श्रेष्ठ सब तारे आप आपनी बूझ उचारे तुम सब ही ते रहत निरालम जानत भेद भेद अर आलम निरंकार निर्विकार जलम आत अनिल अनाथ असम ताका मूड उचारत पेदा जाको पेव न पावत बेदा ताको कर पाहन अनमान महामूड कछ पेद।

आप अपनी बुद्ध है जेती पर्ण पिन पिन तुह तेती तुमरा लखान जाए पसारा कहबत सिजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंग पयो राव कहीं पूपा अंड जेर जसेत जकीनी उत्पुछ खान बहु रच दीनी कहूं फूल राजा है बैठा कहूं सिमट पयो संकरे कैठा सगरी सृष्ट दिखाए अचंपव आ जुगा स्वरूप स्वयंपव अमृत छा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संगरो।

जे अस्तुज तव सरणी परे तिनके दुष्ट दोख तह मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जोकल को एक बार ते आए हैं ताके काल निकट न आए हैं रक्षा होए ताहे सब काला दुष्ट अरष्ट रहे तत्काला कृपा दृष्ट तन जाए निहर हो ताके ताप तनक मोह हर हो रिद्ध सिद्ध कर्मो सब हुई दुष्ट छाह छह सके न कोई एक बार जिन तुम्हें सवार काल फास्ते तय उबार जिन्नर नाम तहारो कहा।

मेरा पगवट प्राण। मैं तेरी पग बन ली है, तू मेरी पग बन ली, ते सिर ते बनी पग नू इज्जत भी समझिया जांदा है कि आज तू तेरी इज्जत मेरी है, मेरी इज्जत तेरी। जदों भी कोई भरा बनदा है आम पगां वटा के पगवट भरा बनदे ने, तो गुरु साहिब जी बाणी विच भी कहिंदे ने साबत सूरत दस्तार सिरा।

तीन पैसे पल्यों खोल के हाथ विच फड़ ले ने। जहांगीर अपने पलंग ते बैठे, कोल एदी बेगम नूर जहां बैठी। तंबू च पैर पाया पर मन नूं खिच ना पई। हुण पग जहांगीर दे सिर ते भी है, कलगी भी लगी।

हाथ जोड़ के कहन लगा, सच्चे पातशाह मेरा जन्म मरण स्वार्थ। जहांगीर हैरान होके इस काई दा मुंह देखन लग पिया, ते नाल कहा, मैं ते बादशाह हां हिंदुस्तान दा, जन्म मरण मैं नहीं सवार सकदा। हां जे तू कवे हेरे जवाहरात महल माड़ियां मैं तेनू दे सकदा। उसने कहा, ना हीरे जवाहरात चाहिए ना महल माड़ियां, बस जन्म मरण सवार दे। जहांगीर कहन लगा, जन्म मरण सवारना मेरे हाथ नहीं, जन्म मरण सवारन वाला दूसरे तंबू विच है, मेरे कोलों हाथी घोड़े।

सिर्फ परमेश्वर नाल प्यार करदे ने और राजियां महाराजियां दी परवाह नहीं करदे। क्यों? क्यों उन्हां नूं पता है इन्हां नूं भी परमेश्वर ने भेजिया है, सानू भी परमेश्वर ने, ते क्यों ना फिर

दुनिया मेरे को डरती है कि मैं बादशाह, पर वो डरते ने जिहड़े खुशामदी ने। जहांगीर सोचता पे उधरों सिख दूसरे तंबू वाल तुर पे।

ए पग गुरु तू सवा एक अकाल पुरख तू सवा किसे होर अगे नहीं चुकनी चाहिए। जेड़ा सिर किसे होर दे अगे चुक जावे दुनिया अगे चुक जावे ओ सिर फिर परमेश्वर दे अगे चुकाण दे लायक नहीं रहिंदा। सिर चुकाना है परमेश्वर अगे चुकाओ जिस दुनिया बनाई है क्यों कि ओ उच्चा है जिड़ा ओदे नाल लगदा है

गर्म कपड़ा भी कोल कोई नहीं, पर फिर भी मन ना डोल रहे है ते ना ही मन डिगा होया। क्यों के जेड़े उच्चे होंदे ने हमेशा उच्चे रहंदे ने।

मैं भी तुहाडे नाल प्यार करना, पर मैं उस बादशाह दे अगे सिर नहीं चुकाना। हार मान लवा, अपनी पग चुका दे आ, एक बादशाह दे अगे सुलाह कर लवा, ए कह के मैं हार गई हां, पर मैं हारिया नहीं। मेरे पुत्र शहीद हो गए, कोई सिख मेरे कोल नहीं, घोड़ा भी मेरे कोल नहीं, सवारी

हाल कहां, गगन के गौन कहां, काल के बनाए सब काल ही चबाए हैं। कलगी धर पाछा काल दी गति अगाध कथन करते हैं। दशमेश पिता जी आनंदपुर साहब ते ऊने साहब दे विचकार जो बंभौर साहब गुरुद्वारा है सतलुज दे ऊपर, उथे बैठ के काल दा कौतक वेख के ए बाणी रची। आपने की तकिया कि मिर्ग आया है पानी पीण लई, ज्यों पानी पीण लगदा है तां इसते मुख विच मच्छी फस जांदी है। दम रुक गया, ऊपर बाज वेख रहा सी, उड़ रहा बाज ते वेख रहा कि मिर्ग दे मुख विच मच्छी फस गई, ते ज्यों इस मच्छी नूं चपट मारन लई बाज आया तां ओ भी मिर्ग दे सिंगां विच फस के शरीर छड़ गया। अख फुरत विच ए तीन मौतां वेख के, ए काल दा नजारा वेख के साहब कलगीधर पातशाह कहंदे ने जल कहां, डूंगे जल विच रहण वाली मच्छी किथे, किवें काल ने सद लिया किनारे ते, आ जा भाई तेरा समा आ गया। थल कहां, तेज रफ्तार थलां ते दौड़न वाला, जमीन ते दौड़न वाला मिर्ग किथे, मौत ने बुला लिया। उच्चियां आकाशां विच उडारियां मारन वाला बाज किथे, मौत ने बुला लिया, आ जा भाई। ते अख फुरत विच तीन मौतां वेख के धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी कहंदे हन कि जल कहां थल कहां, गगन के गौन कहां, काल के बनाए सब काल ही जबाए हैं। कबीर जी ने बड़ा सुंदर ख्याल लिखा कि कबीर एक मरण ते दोए मुए, दोए मरण ते चार, चार मरण ते छह मुए, चार पुरख दोए नाल। कबीर जी कथन करते हैं कि एक हरनी दे मरने ते नाल उसका बच्चा भी मर गया, इसलिए दो ओ मर गए। दोहां दे मरने नाल दो होर मर गए, क्योंकि शिकारी ने जाके शिफ्ट बनी है मिर्ग दी। जो निशाना मारिया मिर्गनी नूं तां मिर्गनी हरनी भी मर गई, ते जेड़ा इसदे बच्चा होण वाला सी क्योंकि गर्भवती सी, बच्चा भी मर गया। हुण जिथे बैठ के इसने निशाना बनिया सी उथे नेड़े ही सप निकलिया, जिसने शिकारी नूं दस्या, शिकारी नूं दस्या ते शिकारी ने झट तलवार कढ़ के सप दी भी उथे ही मित कर दिता, ते आप भी उसे वेले शरीर छड़ गया। तां कबीर जी कहंदे हन दोए मरण ते चार, हुण चार हो गए, इन्हां चौहां दे मरने ते दो होर मर गए। शिकारी दी घरवाली जो गर्भवती सी, उसने जदों वेख्या मेरा पति गुजर गया है, हुण मेरा जीवन त्रिग है, ओ भी ओथे ही टकरां मार मार के आप मर गई। क्योंकि कबीर जी ये सब कुछ अखी वेख रहे सन, ये छे दी गिनती कीती है बाणी दे विच। मिर्गनी दा बच्चा, शिकारी, शर्प, अहेड़न ते पेट दा बच्चा, ये चारे पुरख हन। शिकारी दे घर वाली ते हरनी दे दो, ये दो औरतां हो गईयां। इस दी साखी इस तरह है कि जिस वेले शिकारी अपने घर विचों निकल के बाहर शिकार खेडन गया तां अगों ही एक गर्भ वाली हरनी मिल गई, ते इस वेले शिकारी ने खिंच के निशाना चलाया, उसी वेले हरनी मर गई, नाल ही उसका बच्चा मर गया। इतने नूं जिथे फंदक खड़ोता सी ना, उस जगह तो सप निकलिया, सप ने डंग मारिया, ते शिकारी ने झट तलवार मार के
ਸੱਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਚੜਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਫੰਦਕ ਦੀ ਔਰਤ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਤੀ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਗ ਕਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਗਰਭ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਭਾਵ ਇਸ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਔਰਤ ਦੇ ਮਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੀ ਨਾਲ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕਾਲ ਦੀ ਗਤੀ ਅਗਾਧ ਕਥਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਲ ਨੇ ਤਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਕਈ ਮੇਟ ਡਾਰੇ ਉਸ਼ਾਰੇ ਬਣਾਏ, ਉਪਾਰੇ ਗੜੇ ਫੇਰ ਮੇਟੇ ਉਪਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂ ਮਰੇਂਗੇ।

जियो मैले बहरों निर्मल गली असी चंगिया जियो मैले बहरों निर्मल

मेरे वाल है, जिन्हा वाल गुरु होवे भाई। किसे भी कार्ज करन तो पहला जे गुरु नू चेते कर लिये, गुरु नू उस कार्ज विच खल्यार लिये, ता विच करता पुरख खलोआ, वाल ना विंगा हो। गुर पूरा जिन शिमरिया, जिन्हा पूरे गुरु नू हर कार्ज विच मुख रखिया ना, छे ही पए निहाल, ओ निहाल हो गए। तन दौलत नाल भी ते प्रभु कृपा नाल भी, गुर पूरा जिन शिमरिया, छे ही पए निहाल, नानक नाम आराधना कार्ज आवे रास। तो उना दे सारे कार्ज वाहेगुरु आप करदा, जिन्हां ने भाई गुरु का आशरा लिया। लेखा कोई ना पुछे ही, जा हर बख्शंदा, अणद भया सुख पाया, मिल गुर गोबिंदा, सबे काज सवारी है, जा तुद पावंदा। जिन्हां ने ए अरदास कीती के हे वाहेगुरु, किसे दा कोई आशरा, किसे दा कोई, पर मेरा तो सबो कुछ तुयो ही है। किस ही कोई कोई मंज निमानी हिक, मैं तो एक तेरा आसरा है, तेरी ओट है। ते फिर गुरु आप ही उना दिया शुभ मनोपावनिया।

राग भी बिहागड़ा ही आप जी ने सरण किया है। एक बंदिश रीत जो है पुरातन मान जो सत्कार जो साडे पिता जी गायन करदे ने, तो आओ इस रीत राग बिहागदी है, हुणे याद आई है, आओ बड़े प्यार नाल सरण करो।

तू अपना बिरद पछाणिया उना नाम जपिया ते तू उना दी बांह फड़ ले जिन्ना ने तेरा नाम जपिया तू उना दी पैज रखी जिन्ना ने तेरा नाम जपिया तू उना दी सब थावे रखिया कीती जिमें उना दी पैज रखी जिमें उना दी रखिया कीती जिमें उना दी बां फड़ी ए बाबा जी अज साड़ी भी फड़ लो साध संगत बोलो श्री वाह दासी सुत जन बिदर सुदामा दासी दा सुत बिदर ते फिर सुदामा अत गरीब सुदामा सारी दुनिया दा दलिदर इस दे कर बाल बच्चा टुकर खान नू मंगदा है बिचारे रो के रात नू भुखे सौ जांदे हन ते सुतियां बच्चियां नू वेख के माता पिता दियां आही निकल दियां हन ए बदकिस्मत बच्चे किसे होर दे कर जमदे ए साडे कर आन जमे असी एडे निकरमे इन्हां नू पाल पोस भी नहीं सकदे बेचारे टुकर मंगदे सौ जांदे हन उठदे हन तां मुड़ टुकर मंगदे हन पर रोटी कित्थों जुड़े हर वेले विरलापदे हन पर आखिए रोजी रोटी कित्थों जुड़े ओ भगवान दा दिता सराफ किधर जाए जो भगवान कृष्ण महाराज ने एक

घरवाली दी कन्नी सरोत पई। एक दिन आंधी है सुनिए भगवान सानू भुल गए सन। सुदामे ने रो के आखिया ओ सानू भुले नहीं। आखिया की सबूत है? आखिया भुलदा उना नू है जो उसनू भुला दिंदे। साध संगत बोलो श्री वाहे। कहण लगी जे सानू ओ ना भुल दे ते असी अज एडे गरीब ना हुंदे। इतनी गरीबी साढ़े घर विच ना हुंदी तां सुदामे नू ओ दिन याद आ गए जिस दिन भगवान कृष्ण ते सुदामा गुरु संदीपन पास पढ़दे सन आश्रम विच। पढ़दे सन ते गुरुदेव दी सेवा करदे सन। जिवें आखिया सेवा करनी सारी नाले पढ़ना ते गुरुदेव दी सेवा करनी। भाग उना दे जागदे हन जिन्हां ने सेवा कीती है। उना दे पुन्ना नूं भाग लगदे हन जिन्हां ने सेवा कमाई है। ते जिसने गुरु नानक दे घर नूं अपना घर जान के सेवा कीती ओ गुरु नानक दे घर दे मालक बन गए। इन्हां ने अपने गुरुदेव दी सेवा कीती। एक दिन शामा पईआं मां ने आख्या बच्चो लकड़ा लंगर विच हैन नहीं। भगवान चट तैयार हो गए मां जी हुणे ले आए। सुदामे ने आख्या मैं भी नाल चलदा हूं।

मैं जो आख्या भी मैं कुछ नहीं खा रहे। सत्संग बोलो श्री वाहे। आख्या भगवान तुसी मेरे मित्र हो और मित्र दे उते शक करना ये ठीक नहीं हुंदा। ते तुहाडे मन विच ये आया कि मेरे कोल कुछ है और मैं कला खाई जान। नहीं, मेरे पास कुछ नहीं। ता सुदामे ने दूजा झूठ बोले। भगवान मुस्कुरा रहे सन। उस अगे झूठ बोली जांदा जो अंतरजामी है। हर अंतरजामी सब विद जाने। उस अगे झूठ बोली जांदा ते जिस वेले मारिया तीजा पक्का। भगवान कहन लगे मर सुदामिया मन ना मन भई कुछ ता खा रहे। आखिया इतबार नहीं आया। कहन लगे सुदामिया मैनू आवाज पई आउंदी है। तेरी जबान ते इतबार करा जा अपने कन्ना दे उत्ते। तू सचो सच दस दे मैं तेरे कोलो वंडदा नहीं। सुदामा रोण लग पे है कि तुहाडे कोलो छुपा के की खाना सी। ता अचानक भगवान दे मुंह निकलिया जा ओए दलिद्रे। सुदामा दलित्री हो गया गरीब हो गया। जिवें भाई साहब आखदे हन बेपत सुदामा दाल दी। बाल सखाई मित्र सदाए। बाल सखाई मित्र सी।

ठीक है कि भगवान कृष्ण तुहाडे मित्र हन, उन्हें अच्छा कोई शक है, फिर एक बार जरूर जाओ उन्हां दे कोल। किते मन विच ए ना आवे भी सुदामिया तू एडा गरीब रहे हो, एक बार मेरे कोल ता आउनो। लागू होई ब्राह्मणी मिल जगदीश दलिद्र गवाए, आख्या एक बार जरूर जाओ। ता बहाना लगाया भी एडे वडे पास जावा, नाल ले जान नू कुछ है नहीं, आख्या ए प्रबंध मैं कर देनी हां। गुआंढन दे खोल गई ओगो तान पी छटदी सी, उन्हें आख्या मेरे घर वाले ने भगवान नू मिलन वास्ते जाना है, तो साडे कोल ले जान नू कुछ नहीं, जे तू कुछ उधारा देवे। उन्हें लप चौलां दी चोली विच पा दित्ती ते आख्या लै जा। पोटली विच बन के चोल जिसले सुदामे दी तली ते रखे ते आख्या लै जा, भगवान नू जरूर जाके मिलो, शायद साडी गरीबी कटी जाए, साडा दलिद्र निकल जाए। आखन लगी तुसी एडे गरीब ते ओ द्वारका दे राजे। सुदामे ने आख्या भगवाने ये सब आपो अपनी किस्मत है, किसे नू किस्मत किधर ले जांदी है, मां जनेंदी सत पुत ते भाग न देंदी वंड, बोलिए आपो अपने कर्म लैने। इस करके वो द्वारका दे राजे सदवाए, असी दलिद्र ही अखवाए। आख्या ए दलिद्र दूर करने वास्ते एक बार जरूर जाओ। सुदामे दी तली दे उत्ते ओ चावलां दी पोटली रखी, ते सुदामा जा रहे है भगवान कृष्ण दे दर्शनन। अजरा को ख्याल करो सुदामे वल, आ माड़ा जिया सुदामा तेर लंगोटी हाथ विच सोटी। भाई साहब आखदे न चलदा गणदा गट्टियां, क्यों कर जाइए कौन मिलाए, कौन मिलाएगा कौन सिफारिश करेगा। चलदा गणदा गट्टियां, क्यों कर जाइए कौन मिलाए, आखे पौंता नगर द्वार का सिंह द्वार खलोता जाए। जिसले सुदामा पहुंचिया द्वार का बड़े दरवाजे ते अगे, सिंह द्वार खलोता जाए, अगे बार खलोता है दरबार, उन्हें वेख्या भी कोई मंगता है मंगण वाला। उन्हें बोझे विच हाथ पाया, आख्या लियाओ मंगतिया तली कर। सुदामे ने आख्या मैं मंगता नहीं, मैं मंगण वाला नहीं, ऐसे मंगण वास्ते नहीं आया, जे मंगना ही है तो मैं भगवान कोलो मंगा। उन्हें आख्या फिर किस तरह आए, सुदामे ने आख्या मैं अपने मित्र नु मिलन वास्ते आए। ओ पिया सोचे भी नौकरां दे विच इसका कोई होवेगा रिश्तेदार जिस नाल इसका संबंध होवे। उन्हें आख्या कौन है जिसनु तू मिलन वास्ते आए, सुदामे ने आख्या भगवान कृष्ण। साध संगत बोलो श्री वाह, मेरे मित्र हन भगवान कृष्ण बचपन दे, आ मेरी दशा ना वेख, ए भी उना दा दिता होया सराफ है, आ जो मेरी हालत हो गई, ए उना दी रसना तो निकलिया होया बोल जो मैं आज ताई पिया भुगतदा। इस करके जाके बेनती कर।

आए इते ना किते दिन खोए इन्हें दिन किथे रहे। रुक्मणी रात का सोने चांदी दिया गागरा भर के ले आई। जिसले चरण धोन लगे आओ सखा तू पाए महादुख आए इते ना किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दिशा करुणा करके करुणा निद रोए। नहीं पात्र पानी को हाथ छोयो बस नैनन के जल से पग धो। रुक्मणी राज का जल लेके खलोतियां रहिया नैनन के जल से पग धोए। भगवान कृष्ण ने अपने सोने नैना दे पानी दे नाल सुदामे दे पैर धो दे। फिर आखन लगे सुदामे आ सुनिया भी तेरा विआह हो गए महाराज बाल बच्चे भी हैं सुखी हैं तुहाडी कृपा है। लगे सुदामिया जिसले आन लगा सा भाभी ने कुछ खान वास्ते दिता नहीं मेरे वास्ते कुछ ले आया नहीं। ओ छोटी जी पोटली जो कछ विच मारी हुई सी चौलां दी जो छुपाई बैठा सी सुदामा। आखन लगे सुदामिया कुछ दिता नहीं चुप रहे। अगे होके भगवान कृष्ण ने वो चावलां दी पोटली जिसले कड़ी आख्या सुदामिया अगे वखरे छोले खादे सन। वो पोटली खोली भगवान कृष्ण महाराज ने ते जिसले मारिया फका ते आखन लगे बड़े मिठे। सत्संग बोलो श्री वाह। सजे खबे रुक्मणी राधिका ने हाथ फड़ ले भगवान कच्चे हन पेट विच दर्द करनगे। आखन लगे नहीं वही ये भक्त दा प्रसाद है। भक्त दा प्रसाद होवे सही उस विच कोई अनोखा स्वाद हुंदा है। ये मेरे भक्त दा प्रसाद है। कुछ दिन सुदामा भगवान कृष्ण महाराज दे कोल रहा बड़ा प्यार की कथा वार्ता कीतिया दुख सुख फोले। एक दिन सुदामे ने बेनती की भगवान हुण आ गया बख्श बड़े दिन हो गए इत्थे रहिंदिया हुण घर जावा वापस बाल बच्चा उड़ीकदा होवेगा। कहन लगे अच्छा कुछ दिन रहो भाई सुदामे अजे साडा दिल नहीं परे आ पुराना प्यार चेते आ गए जो बचपन च कठे रह के समय गुजारे सन। ओ दिन जड़े कठिया गुजारे सन ओ दिन नहीं भूलते सुदामिया उना दिना दी ए दिन याद हन इस करके कुछ दिन ता रहो। सुदामे ने हाथ चा जोड़े भगवान हुण आ गया बख्श ते कहन लगे अच्छा सुदामिया चल फिर तैनू कुछ दूर तक पहुंचाव। ते सुदामा मन विच पिया सोचदा भी प्यार ता बड़ा कीता है पता नहीं की कुछ बख्श वड़ियां दा कम है दान देना छुपा के दे। होशियां दा कम है दान देना दिखा के देना। आख्या है वड़े लोग हन शायद कुछ छुपा के देना चाहते होन भी प्यार तो बड़ा कीता है। जिस वेले बाहर आए सुदामे नूं छड़न वास्ते कुट गल वखड़ी पाई सुदामे आ फिर भी आ। सुदामा मन विच पिया सोचदा भी दिता था कुछ नहीं बस गली बाती प्यार बड़ा कीता पर कुछ दे दिन दे। घरवाली नू की मुंह जाके दिखावांगा भी मित्र दे कोल गया सा भई उस मित्र दे कोल जेड़ा राजा जिस दे बूहे ते राजे महाराजे नक रगड़दे हन। ओ की आखेगी उहदे द्वार तो तू खाली आ गयो तेनू कुछ ना मिलिया। ये मन विच पिया सोचदा ही सी इसे कुटगल वकड़ी पाई ते आखन लगे सुदामिया मुड़ फेर आवी। पुठे पैरी सुदामा तुरिया कुछ दूर तो जाके जिसले सिद्धी पैरी होया ते सुदामे ने आखिया चंगे एस जमाने दे यार जारो चंगे एस जमाने दे यार जारो जेड़े हाल आए मुड़े जाम दे हां केड़ा बख दिता सानू माल यार हथों चौल भी दे गवा बैठे अजड़े कुछ कुछ चौल सन वह भी भुखा खा गए।
जे ना खांदा ते असी एक डंग उबाल के खा लेंदे साडे बाल बच्चे का गुजारा हो जांदा। ओ भी खा गए कुछ ना बख्शे। बड़ा निराश होया सुदामा। मन विच चोरदा जिस वेले घर वापस परतिया ते गली विच आया ते की डिठा भी जिथे उसकी चुगी सी उथे सोने का महल खलोता। सतसंग बोलो श्री वाह। किसे नु पुछदा क्यों भाई इथे ता सुदामे दी चुगी सी। मैं आख्या सुदामिया इथे तेरा ही महल है ये सोने दा मंदिर। हैरान पिया होवे सुदामा भी ये किवें बन गया सोने दा। जा अंदर वड़िया घर वाली आई पैरी मत्था टेकिया। सुदामे ने आख्या आ सोने दा मंदिर। उसते भी नेत्र बार आए ते आख दी है स्वामी मैं आख्या सी ना एक बारी भगवान कृष्ण महाराज दे कोल जरूर जा साडा दलिद्र कटिया जाएगा साडी गरीबी कटी जाएगी। आ जो कुछ पे वेख दे सोने दा मंदिर अंदर पदार्थां दा ढेर लगा हो ये सब कृपा भगवान दी है ये सब बख्शिश उस दी है। अतको ना सोने दा मंदिर कर दी हालत नू तको ना कितने पदार्थां दा ढेर लगा होए। ते हुण सुदामे दे भी नेत्र बार आए। मैं मन विच की सोचदा पिया सां ते भगवान ने मेरे नाल की कीती। मैं की जानदा सां कि तुहाडी इतनी कृपा है कि तुसी चाहो ते एक फुरने दे अंदर ये सोने दा महल उसार सकदे। भाई साहब आखदे हन पुछे कुशल प्यार कर गुर सेवा दी कथा सुनाए लैके तंदुल चबियन विदा करे अगे पहुंचाए चार पदार्थ संकुंच पठाए। अज भगवान कृष्ण महाराज की कृपा दा सदका सुदामे नू चार पदार्थां दी प्राप्त हो गई। जिवें बाणी विच आख्या चार पदार्थ जे कोई मांगे साध जना की सेवा लागे। जे को अपना दुख मिटावे हर हर नाम हृदय सद गावे जे को अपनी शोभा लोरे साध संग ए होमे छोरे। आखे जे को जन्म मरण ते डरे साध जना की सरणी। जिस जन को प्रभ दर्श प्यासा नानक ताके बल बल जासा। जिन्हां ने गुरु घर दी सेवा कीती है बई प्यार दे नाल मन खड़के पर उपकार दा जीवन जीवे है उन्हां नूं साईं ने बख्शिशां कीतियां रहमतां कीतियां ते जिन्हां ने तेरा नाम

जे औकौड़े रीठे ते नजर पैगी गुरु नानक सचे पातशाह दी तां मिठाओगे। साध संग बोलो श्री वाह। जिमें आखिया कौडा सी जो कौडियां दा लखां दा बनाए दिता, चोर मन होर होए रोए के पुकारिया, सजन दे नाम हेठां ठगदा जहान सारा, ठगिया गया आप हथ कन्ना नू लगा लिया, होई शर्म सारी सी जो वली कंधारी ताई, एक हथ नाल जां पहाड़ी नू करारिया। आख्या केड़े केड़े दसा, केड़े केड़े दसा, जेड़े किरती गरीब तारे ओवे किवे तारो, जिमें लालो ताई तारे, जिमें उन्हां नू तारिया, पापियां नू तारिया, पततां नू तारिया, पामरां नू तारिया, दुष्टां नू तारिया। हे गुरु नानक सच्चे पातशाह, आओ गुरु की साजी नवाजी साध संगत बेनती करो, गरीब नवाज जिवें उन्हां नू तारिया, अज साडी भी बांह फड़ लो, साडी भी रखिया करो। के साखी महाराज जी करदे सन, आओ भाई असी भी अरदास करी, प्यार नाल कीती अरदास दरगाह विच परवान हुंदी है। कोई

कृपा करो, दीन के दाते मेरा गुण अब गुण ना विचारो कोई। एक्सटेंड योर मर्सी ओ जनरस गिवर लॉर्ड ऑफ द मीक, प्लीज डू नॉट कंसिडर माई मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। माटी का क्या तो पै स्वामी, मानस की गत ए ही। हाउ कैन डस्ट बी वॉश्ड, ओ माई लॉर्ड एंड मास्टर, सच इज द स्टेट ऑफ मैनकाइंड। मेरे मन सतगुर सेव सुख होई, ओ माई माइंड सर्व द ट्रू गुरु एंड बी एट पीस। जो इच्छो सोई फल पावो, फिर दुख ना व्यापै कोई। वट एवर यू डिजायर यू शैल रिसीव दैट रिवॉर्ड एंड यू शैल नॉट बी अफ्लिक्टेड बाय पेन एनी लॉन्गर। काचे भांडे साज निवाजे, अंतर ज्योत समाई। ही क्रिएट्स एंड अडॉर्न्स द अर्थन वेसल्स, ही इन्फ्यूजेस हिज लाइट विद इन देम। जैसा लिखत लिखिया तुर करते, हम तैसी किरत कमाई। As is the destiny preordained by the Creator, so are the deeds we do. Man tan thaap kiya sab apna, eho aavan jana. He believes the mind and body are all his own. That is the cause of his coming and going. Jin diya so chit na aavai, mohe anth laptana. He does not think of the one who gave these things. He is blind, entangled in emotional attachments. Jin kiya soi prav jaane, har ka mahal apara. One who knows that God created him reaches the incomparable mansion of the Lord's presence. Bhagat kari har ke gun gaama, nanak das tumhara. Worshipping the Lord, I sing his glorious praises. Nanak is your slave. Kirpa karo, deen ke date, mera gun ab gun na vichar.